सर्वदेवा दे देवता आत्मा आत्मवा देवस जे को जाने पे ओ नानक तक दास है सो निरंजन देव मल।

लाटं द्वय धोती वस्त्र कपाटं जय जान सुरमं कर्मं सफोकट ने चाकर्मं गुरु नानक ने चो त्यावै विन सतगुर वाटना।

निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। कोई जाने कवन इहां जग मीत, जिस हुए कृपाल सोई बिद बुझे।

संग सख सब तज गए को नन भयो साथ कहो नानक इह बिपत में टेक एक रघुनाथ ना

जब ही हंस तजी ए काया प्रेत प्रेत कर पागी एह बेद को व्यवहार बन्यो है जासो ने लगायो अंत बार नानक बिन हरजी

जगत में झूठी देखी प्रीत, आपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत।

नहीं जिस पह करूं बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। हूँ आया दूर हूँ चल कर, मैं तक्की तौ सर नाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सब दुख गवाए जियो। दंडौत मंदन अनक बार, सर्व कला सम्रथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। परम सन्मान योग, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी दा लाहा प्राप्त कीता है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ पावन शब्द भाई साहब जी पासों सरवन कीता। शब्द दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है, मन बिरतियां नूं एकागर करदे होए निमाणे जे हो के गुरु पातशाह जी दे पावन चरणा विच जुड़न दा यतन करिए। सतगुरु जी अज दे शब्द दे राही मनुखी दुनियावी जीवां नूं जो समझाउणा चाहुंदे हन, एक मन एक चित हो के

गए मशकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहे गुरु।

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸੱਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਤਵੈਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੁੱਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੀ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਏ ਸੁਨਾਤ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵੜੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀ ਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾ ਕਰ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ।
सिर से रिजक समाहे ठाकुर कहे मन भाव करया। उड़े उड़ आवे सै कौसा तिस पाछे वचरे छरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करया। सब निदान दसे अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परा भरिया। सब निदान दसे अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परा भरिया। राग आसा महला चौथा सोपुरख इक ओंकार। सतगुर प्रसाद सोपुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा। सब ते आवहें तुद जी हर सच्चे सिर जनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर दयाब हो संतो जी सब दुख विसार नहारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्व नरंतर जी हर एको पुरख समाना। इक दाते इक पेखारी जी सब तेरे चोज वडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हरते आवही तुद जी से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त पाए जैनो हर ते आया जी तेना टूटी जमकी फांसी। जैनो निरपो जिन हर निरपो ते आया जी तिनका पौ सब गवासी। जिन से बया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत पंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर निक अनंता। तेरी अनक करें हर पूजा जी। तप तापहें जपहें बयंता तेरे अनेक पढ़ें बह सिमर शास्त्र जी। कर किरया खट कर्म करंता से भगत वाले जन नानक जी। जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी। तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सिरे सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी। जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सजया रमिंडा साई। जो तो पावे सोई थीसी
जो तू देहें सोई हो पाई रहो। सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुगवाया, तुदे आप विछोड़िया आ मिलाया। तू दरिया सब तुझी माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाही। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। जिसना तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा नाही कोई। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोई। तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सरवरणे भैले निवासा। पानी पावक तिन्हे किया, पंकजों मोह पग नहीं चाले। हम देखा तहें डूबी अले, मान एक न चेतस मूड मना। हर विसर तेरे गुण गलिया रहो, ना हो जति सती नहीं पड़या। मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणव नानक तिनकी शरना। जेनों तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा किते ना काम, मेलो साज संगत भाजे केवल नाम। स्रंजाम लाख पवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो। जप तप संजम धर्म नाक माया, सेवा साध न जन आहर राया। कोहु नानक हम नीच करम्मा, शरण बरे की रखो शर्मा। जब तप संजम धर्म ना कमया, सेवा साध न जन आहर राया। कोहु नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो शर्मा। इक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब तुम काब हो। आवाद मुहि बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सवे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं। जो वर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है। चुन चुन शतर हमारे मारी है, आवाद मुझे उबरिए। मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा। श्री अस्तु जो करी हो रक्षा, राख ले ओ महे रखण हारे।
साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजो अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सलोक सवारा, नमस्कार हैं तहें हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दें जक्षण बजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के पढ़ पढ़ की जन्ने, जाओ युद्ध करक करा कर तारा, प्रजा तरत दा देहे अपारा, जब आ करख करत हों कब हूँ, तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत बेद भेद अर आलम, रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड़ उचारत पिदा, जाको पीव न पावत बिदा, ताको करपाहन अनुमानत, महामूड़ कछ पीद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, रंकार का चीनत न भिव, आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कि विद सजा प्रथम संसारा, इक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंड जेर से तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी, कहो फूल राजा हवैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी सृष्टि दिखाए अचंप, आजुग स्रूष्यंप, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखियो वारे सिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण गाता, जे आस तो जे तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख नहाए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे, जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट न है, रक्षा हुए ताही सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला, कृपा दृष्ट तन जहे न हरयो, ताके ताप तनक मैं हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शहा शवा सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें सवारा, काल फांसते
ताहें ओबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो ओवारी सरढ़ मोह सहाई दुष्ट दोखते देहो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी सरठ मोह सहाई दुष्ट दोखते लेहो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो सिरियस पाण कृपा तुम री कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ के गयो तुहारो द्वा की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छाड़ के गयो तुहारो द्वा बहीं गहे की लाज अस गोविंदास तोहा रामकली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सह सीती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां शब्दो तंगाव हरी गेरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब में सारना अंगीकार ओह करे तेरा कर सब सवारना सबना गलना सम्रत स्वामी सो क्यों मनो मसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा घरदा तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द गनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही घर तेरा सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जैनों भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन वसया जैनों इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटो जिस दियां एह बड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तित घर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंचदूत वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनकाओ से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होआ तित घर अन्न हद बाजी।

दोहरा गया पई अकाल की, सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मानियो, जो प्रभु को मिल बोच है। राज करेगा खालसा खुआ।

जिस होए कृपाल सोई मिद बूजै, ताकी निर्मल रीत रहाओ। मात पिता बनिता सुत बंदप, इष्ट मीत अर पाई, पूरब जन्म के मिले संजोगी, अंतह को न सहाई, मुकत माल कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बिहानी अवदे, तामे संतोख ना पाया, हस्त रथ असव पवन तेज तनी पूमन चतरंगा, संग न चालियो इन में कछु है, ऊठ सदायो नंगा, हर के संत प्रह प्रीतम प्रभु के, ताके हर हर गईये, नानक इया सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाईये, हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभु के, ताके हर हर गाइये, नानक इहा सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाईये। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

जितनी संगत बैठी है हाले भी उतनी आवाज नहीं आ रही। आप जितने भी बैठे हो गृहस्थी हो संसारी हो तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, किसी नु काम कार विच वादा चाहिए, किसी नु शरीर दी दे अरोगता, कोई धियां पुत्रां दे सुख मंगदे, कोई कमाई विच बरकत चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, जो चाहिए मंगो सतगुर कोलो। एक बारी दास

जिन्हां गुरु के प्यारिया ने श्रद्धावान संगता ने कीर्तन का सत्कार करदिया होया उन्हां बच्चियां वास्ते माया अरदास करवाई है। साडी अरदास है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज कृपा करन जिन्हां संगता ने उन्हां बच्चियां वास्ते माया भेट कीती है। महाराज आप सब की किरत कमाई कारोबारा विच बरकत बख्शन आने वाला समा सुखा भरिया आवे। मेरे सतगुरु तुहाडा ते तुहाडे बच्चियां दा भला करन साडी यही अरदास है।

इतनी सेवा प्रवान करनी। धन्यवाद है जुगो जुग अटल गरीब निवाज सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा, जिन्हां दी पवित्र बाणी सदका आप संगता दे दर्शन प्राप्त होए ने। दूरों नेड़े उचल के आईया हुई श्रद्धावान संगता दा धन्यवाद। अति धन्यवादी हाँ गुरुद्वारा दुख निवारण साहब दे मुख सेवादार सत्कारयोग सरदार प्रतपाल सिंह जी अते गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे समूह मैंबर साहबान दा धन्यवाद है। साडी अरदास है महाराज कृपा करन आप सब संगतां दा चलिया होया एक एक कदम अपने लेखे विच लगान। दासां तों बाद आवाज विच रूहानी ताकत रखण वाले परम सत्कारयोग यानी परमजीत सिंह जी खालसा श्री आनंदपुर साहब वाले आप जी नूं गुरमत विचारां द्वारा निहाल करनगे। इतनी हाजरी प्रवान करते हुए अपनी असीस बख्शो फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा

अगम अगोचर सच साहेब मेरा सच गुरु ग्रंथ साहिब पिताजी साहेब मेरा साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पिताजी सच साहेब मेरा नानक बोले बलाया तेरा नानक बोले बलाया तेरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गज वज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक भजन सरकार ने किया भैन कबीर थोड़े जल मछली थोड़े जल मछली की अर्थ बनया पानी थोड़ा है एक मछली रही पानी बहुता नहीं आख वाहेगुरु पानी थोड़े जल मछली समझ लग गई ते चीवर मेलो जाल पता लगा चीवर कौन हुंदा मछियां फड़न वाला थोड़े जे पानी च मच्छी रहिंदी सी एक दिन मछियां फड़न वाले ने आण के जाल पाता पानी थोड़ा है जे पानी चो बाहर जांदी तां मरदी पानी दे विच रहिंदी तां मरदी पानी दे विच रहिंदी आ ते चीवर ने जाल च फसा लेना है आखो वाहेगुरु चीवर ने जाल फसा लेना बाहर निकलती है तो पानी तो बिना तड़फ के मर जू नहीं पता लगा और माल वाला मुलांबर तेरे नाल वाला पता लगा है थोड़े पानी छपड़ी दे विच एक मच्छी रहिंदी उहदे विच एक मच्छी रहिंदी छपड़ी च शिकारी नूं पता लगा भी पानी तो कोई बहुता नहीं ताडा हाल भी इहो जे तैयार रहो तैयार रहो तुहाडे दुआले भी पानी थोड़ा जिहा होणा आख वाहेगुरु ते शिकारी एक नहीं उह ते कर्मां वाली सी जिहदे दुआले शिकारी एक लगा सी कितने भजन उठ जाती है चीवर मेलो जाल चीवर ने आण के जाल मेलता मेरा बाबा पता की कहिंदा कहिंदे ये टोक ने ना छुट से इन्हां टोयां विच नहीं छुट सकती अगे आ जा अगली जगह इत्थे नहीं छुट सकती ये टोक ने ना छुट से बाबा कबीर कहन दिया कबीर थोड़े जल मछली चीवर मेले जाल फिर मच्छी नूं कहिंदा ये टोक ने ना छुट सै ये निके निके टोयां विच नहीं तू बच सकदी बापू फिर की करा कहिंदी फिर कर समुंद संभाल फिर कर समुंद संभाल भलीए जे किते कर सकदी है तो समुंदर नूं चेते कर।

कबीर समुद्र ना छोड़िए, समुद्र में गुरु ग्रंथ साहब जी ने कह रहे जे अख वैगुरु कबीर जो अत खारो होए, जो समुद्र कि तरह दा पानी कि तरह दा इतों नहीं मर्यादा लगती, इस तरह भी बड़ी नहीं मनी जानी जी, शराब छड़नी पैनी आ, परबट्टे कट्टणों छड़ने पैने ने, दाढ़े रखने पैने ने, ये मीट मूट सब कुछ छड़ना पैना है, ये औखी आ। छबड़ी जी वड़ जो साहब गुरु ग्रंथ साहब जी समुंदर ने आख वाहगुरु। बाबा कबीर कहिंदा कमणीए भाजा कादे च, समुंदर च भाजा। अज हर सिख नूं मेरा गुरु आजा मारिया, बचना चाहुंदे हो तो गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लग जाओ, जे बचना चाहुंदे हो तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे नहीं लगते। साडे नाल ज्यादा रच छपड़ियां च, तू तो पिंड वाला है, तेनूं पता छपड़ी दे अंदर जिहड़ा चिक्कड़ हुंदा किन्ना चीकना हुंदा लगदा, ये जिहदे गल पै जांदे ने डेरे वाले मुड़ के लगदे, बोलो जिहदे पिछे पै जांदे कौन, तू जानदी किसे डेरे वाले नूं, जानदी फिर मेरी नहीं, मैं ना दसूंगा तो मैनूं रोज़ ही आखणगे तू यार इन्हां दे पिछे प्यार इन्हां, गल छिपड़ी दी चल गई। छपड़ी का चिकड़ जड़ा है ना बड़ा चीकना, एक बार कितने पैरों में लग जाए फिर लथदा ने। मेरा गुरु कहिंदा जदन तू किसी डेरे च फस गए हो ना, इन्हां तैनूं छड़ना नहीं, चार चार नस्लां तक लोग उत्थे तुरे जाते, एक डेरे च अज जो प्यो चले गया ना पुत भी उत्थे जाओ, गां पोतरा भी उत्थे जाओ। बाबा कबीर कहिंदा समुंद ना छोड़िए, बोलो समुंद मिंज, वैसे समुंदर तो समुंदर कौन आ, गुरु समुंद नदी सब सिखी, गुरु समुंद सारिया नदियाँ ये सिख ने, एक जिन्हें सिख हो ना तुसी बैठे, तुसी नदियाँ जे सारे, तुसी समुंदर विच पैना तुहाडी यात्रा पूरी हो जाणी, बाहर रह गए तो सुक जाओगे, जिहड़ा पानी समुंदर तो पिछे रह गया सुक गया, जीवन बर्बाद हो गया। कबीर समुंदर ना छोड़िए जो अत खारो होए, भावें किन्ना खारा उहदा पानी होए, पानी खारे वाली ना वेखियो उहदे च होर बड़ियां वड्डियां वड्याईयां ने, मच्छी दे मगर नठ जू कुछ करी जिहड़ा समुंदर च वड़ गई। जिहड़ा सिख गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल जुड़ गया उहदे पिछे जम पै जाणगे, सुन के जम के दूत ना है तेरे, ना ही सुनिया गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, जम छड के भज गए, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।

आखो सतनाम श्री, शब्दावली सौखी है कबीर समुंद, कभी भी गुरु ग्रंथ साहब नू ना छड़िए, ना जाइए किसी बाबे को, मर जाना बाबे ने, समुंदर सुकन लगा कभी छबड़िया सुक जानिया, वो आ जड़ा सुखदा नहीं उस मालक दे कोल शरण में, आ जड़ा मरदा नहीं ना वो मरे, नो नो नो विषय का नहीं पता, ना वो मरे ना होवे सोग, वो देंदा रहे गुण ए होवो, इहदा अर्थ ये ना कहना भी उहदा इहो ही गुण आ, समझाया ही एक बार नहीं, गुण ए होवो उहदा इहो ही गुण आ भी उहदे वर्गा होर कोई नहीं, इहदा अर्थ है, पता लग गया, ये नहीं भी उहदे च इक्को ही गुण आ कि रुझी देंदा है, वह नमाणिया की पत पत भी रखता है, उन्हें धरिया की धिर भी बन के बह जाता, आखो वाहगुरु। मेरी सरकार ने आख्या समुंद ना छोड़िए, मच्छी नू आख्या निकल जा मीलों दे मील निकल जा, आखो वाहगुरु। एक बार समुंदर च वड़ जा गरंटी मैं देना, कुछ करी तेनू नहीं फड़ सकता, मेरा गुरु कह रहा सतगुर सिख की करे प्रतपाल, तू आ ते सही इत्थे, सतगुर सिख की करे प्रतपाल, सेवको गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरे, गुर बचनी हर नाम उचरे, सतगुर सिख गुर का सिख, सतगुर सिख को गुर का सिख, सतगुर सिख का हलत ते पलत सवार, लोग ते परलोक सवार दिंदा, समुंदर च आ जा, फिर सरवर अंदर हीरा मोती, समुंदर दे विच वड़ना समुंदर दे विच चले जाना औखा बड़ा है, बड़ा डर हुंदा, मगरमच्छ तुरे फिर दे, मगर मगरमच्छ तेरा नहीं कुछ भी उगाड़ सकते, कि वह तेन उतारन वाले ने समुंदर दे विच, जिन्हें तेन उतारिया वह तेरे नाल बैठा, जिन्हें तेन समुंदर च आखा ना वड़ जा, वो अंग संघ है, बड़े बड़े मगरमच्छ इतों फड़ लेंदा, फड़ लिया कि नहीं सारी, कुछ रह गए वह भी फड़े जाने, कितने चली गई गड्डिया तकारा, कितने चली गई पंजा पंजा स्कट नाल, बड़े बड़े जड़े बड़े मगरमच्छ थे ना, उन्होंने मेरा गुरु गरीब नवाज पातशाह इतों फड़ के सिख नूं कहिंदा कर ला सैर समुंदर दी, कबीर समुंदर न छोड़िए, फिर एक बार चेता करो, आखो कबीर जो अत खारो होए, जो वरदे ते लोग ना समुंदर दे विच भी एक खारा बड़ा पानी बड़ा खारा है, वंदे तू खारे च वड़ जा, जो अत खारो होए पोखर पोखर टूंडते भलो ना कहे कोए, अज उस डेरे ते बैठा, अज उस डेरे ते बैठा, अज मैं वेख्या एक बाबे नूं, आखो वाहगुरु। वह किसे कुड़ी दा विआह करन रिहा बिना गुरु ग्रंथ साहब तो, आप सिर ते हाथ रख के ते शब्द साडा पंड है गुरबाणी दा, मैं एक बार करूँगा जथेदार साहब नाल गल, आखो वाहगुरु। शब्द गुरबाणी दा पलर है, सतगुरु होए दयाल तां श्रद्धा पूरी है, उन्हें पग पोचवी बधी सारी दुनिया की पानी पैली लुट के खा गया, दरिया पूर के खा गया, ये जी सतगुरु ने, सतगुरु केवल गुरु ग्रंथ साहब जी ने धरती ते, मेरे गुरु नानक साहब ने अपने आप नूं सतगुरु नहीं आख्या, आखो वाहगुरु। की नहीं आख्या? सतगुरु नहीं आख्या, कहिंदे सतगुरु मेरा ये है, सारयां दा सतगुरु आ गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह। जवत खारो होए पोखर पोखर ढूंढते, निके निके तला निके निके छपड़ियां पोखर पोखर ढूंढते, वह भलिया मच्छी नूं कहिंदा है भलो ना कहे कोई, तू साहब गुरु ग्रंथ साहब नूं छड़ के कदी किते चल जाना, कदी किते चल जाना, कदी सुनिया जी ओ उत्थे बड़ा, कदी ईसाइयां पिछे भज गए हो, कदी पिछे बाबे किसे भज गए हो, कदी किसे बाबे दे भजवे हो, जिहड़े बंदे लोकी डेरेदारां दे जाके भीड़ बनाउंदे आ, 70,000-80,000 बंदा इकट्ठा हुंदा उत्थे, आखो वाहिगुरु। इहदे पिछे नहीं गए,
नहीं पता लगा इहदे करके नहीं गए, इहदे करके गाउण ते इत्थे लैणा लगियां हुण नहीं पता लगा। इत्थे कोई बाबा नहीं बैठा, जिहड़ा बैठा उहनूं पछाणदे नहीं, कहिंदे कोई बाबा जी होण। आप कीर्तन करके गईआं ना बच्चियां, इन्ने चिर तो मैं कथा कर लिया भी लोगों किसी के पैरी हथ नहीं लाना, लोगों किसी के पैरी हथ नहीं, उतों तक भजे गए नहीं, बीबियां भजिया गई जड़िया उन्हें पैरों के हथ ला, फिर तो कोई सुनिया सुनिया तो कुछ ना बनी। आखो वाहगुरु। कबीर समुंदर न छोड़िए जो अत खुआरो होए, पोखर पोखर ढूंढते भलो न कह कोए, नहीं कमलिए। फिर मेरे सतगुरु ने बाबे फरीद ने एक बचन किया, आखो वाहगुरु। गरीब नवाज पातशाह कहिंदे आ सरवर दी संगत करी, छप्पड़ दी ना करी, छप्पड़ दी ना करी। छप्पड़ च की हो गया, चिक्कड़ डुबे हाथ, छप्पड़ च की इन सानू पता भी नहीं लग रहा। आ नानक सर की होया, चिक्कड़ सी कि उत्थे हीरे सी मोती सी, चिक्कड़ सी उत्थे, चिक्कड़ च हाथ डुब गए, हुण रोंदे फिरदे। आखो वाहगुरु। आ मेरा साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, अज तक जदों दे धरती ते प्रकाशमान होए ने कोई बंदा दसे कोई धी दसे इन्हें किसे दी बांह फड़ ली असीसा देंदा। ताडे बंधन कट्टे, तानू चढ़दी कला बख्शे, समुंदर है ना। इत्थे फिर कमाल दी गल है, गुरबाणी च लिखिया भी ए सरवर दा ते तुहाडा, सुनियो सुनियो तगड़ियो। सरवर हंस तुरे ही मेला, आडा तुहाडे मैनी जन्ने बैठे हो ना, तुहाडा मेल उत्तों तुरों लेके भेजिया भी आ जेड़ा बंदा वा इहदा सरोवर नाल मेल होना, सरोवर नाल, क्योंकि हंस आ ते हंस ने डडियां ते खानियां नहीं, बगले खांदे। आखो वाहगुरु। सरवर हंस तुरे ही मेला, बोलो खसमे एवं भाणा, खसमे सरवर अंदर हीरा मोती सो, हंसा दा खाना। जेडे सिख ने ये की ने, बोलो डरदे क्यों ने, ये हंस ने। आ खुलिया दाड़िया वाले गुरसिख अमृतारी कृपाना गलां च पाइया, ये हंस ने। ये डडियां नहीं खांदे ठेकियां दे बह के, शराबा मीट नहीं खांदे। आखो वाहगुरु। इन्हां दा पता लगा भी ये हंस ने, मरते जाणगे भुखे मगर खाणगे मोती। एक किते ओ किसे बाबे दी गल नहीं सुणगे, गुरद्वारे आण के अपने सुन सुन जीवा तेरी बाणी, सुन सुन जीवा तेरी बाणी, सुन

खराक की या हंस दी मोती, हंसा हीरा मोती चुगना, बोलो जेड़े हंस होंदे ना डंडिया नहीं खांदे, मच्छियां नहीं खांदे, भुखे मर जांदे। सिखा तू कानू इधर उधर दिया कविता सुनने भज गया है। कमाल दी गल है, एड्डी दूर जाके गड्डी च तेल फूक के ते जिथे जाके दवान च बैठा उथे कविता पढ़िया जा रही, बाणी नहीं। तू तो अरदास की सी, अरदास करी प्रभ की करा

जुड़ के आवाज होनी चाहिए, इस तरह नहीं। कल मेनू को फ्रांस तो कह रहे भी एक रस नाम जप दो, एक आवाज

पवन पवित्र हजूरी अंदर पंचम कड़ा प्रसाद जी देख सच के हाजिर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो। जो जी सके आप जियां दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे। आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो। हुक्म अनुसार जीवन ज्यों दी समर्था बख्शो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सिख पढ़ दे।

सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े समालियन देखेगा, देवन हार तेरे दाने कीमत न पवै, तिसदा ते कवन सुमार।

खंडाहि पूर्व लिखित लिखे गुर पाया मन हले मंडल मंडाहि कर साधु अंजलि पुन वड्डाहि कर डंडौत पुन वड्डाहि रहाउ साकत हर साधन जाने अंतन अंतर हो मैं खंडाहि ज्यों ज्यों चले चुवै दुख पावे जम काल सह सह डंडाहि हर जन हर नाम समानि दुख जन मरण पव खंडाहि अविनाशी पुख पाया परमेश्वर वासुर खंड ब्रह्मंडाहि हम गरीब मस्कीन प्रभु तेरे हर राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है।

जाका एक नाम अछल संसारे, जिन भगत पव जल तारे, सिमरो सोई नाम प्रदान, तित नाम रसक नानक लहना थप्यो, जे

रव किरण प्रगट संसार है, साख तरोवर मवल सरा, उत्तर दक्षिण पूब अर पश्चिम, जय जयकार जपंथ नरा, हर नाम रसन गुरमुख बरदायो, उल्ट गंग पश्चिम तरिया, सोई नाम अछल भगत है पव तारण, अमरदास गुर को फुरिया, सिमरह सोई नाम जख अर किन्नर, सादिक सिद्ध समाद हरा, सिमरह नखियतर अवर ध्रुव मंडल, नारदाद प्रहलाद वरा, ससियर अर सूर नाम उलास है, सैल लो जिन उदरिया, सोई नाम अछल भगत है पव तारण, अमरदास गुर को फुरिया, सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन, शिव सन काद समुद्रिया, चवरासी सिद्ध बुद्ध जित राते, अम्बरीक पवजल तरिया, ऊधो अक्रूर तिलोचन।

0: भगत है भव तारण अमरदास गुर को फुरिया।
1: तित नाम लागते तीस त्यावे जति तपिसर मन वस्या सोई नाम सिमर गंगेव पिता मैं चरण

सजन सच्चा पातशाह सिरसाह दे साहो जिस पास बैठिया सोही सब ना हो जिस पास